पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले।

परे की राखो सरमा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह पातशाही दसवीं चौ पई पुनरासस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा।

सत्रह सहस पनिजै अरद सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रोपखयाने त्रया चरित्रे मंत्रे भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा।

0: साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम अरदास
1: दियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे।

0: साहु दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सरसाज जी दे दर्शन इशनान चमकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी।
1: वाहिगुरु
0: सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे हजूर उदास बेनती आप जिया ने कृपा रहमत कीती है सब तो पहला संगतां तो नाम सिमरन गुरमत विचारां करवाईयां उपरंत सोदा रहरा साहिब जी दे पाठ करवाए हन समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा सिमरन दा भाव गुरमत विचारां दा भाव सब दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दार हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वादे करने सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती है समूह संगतां वालों दर कर दे सेवादार भाई जगतार सिंह उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते कृपा करनी जी अपने सेवकां नूं तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां सच्चे पातशाह जी इस वेले बख्शियां खजानियां विचों कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाव भोग हराए आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिलिया दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दुख निकट नहीं आवै। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सो वाहिगुरु ने कृपा की है हजूरी रागी जथा भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी मुख ग्रंथी सेवा दी कीर्तन की हाजिरी पा रहे सन। हुण कोई समा लड़ीवार गुरशब्द दी विचार नाल जुड़ांगे। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। सो कथा चल रही है जगत गुरु जगत तारक जगत रखियक जाहर पीर जगत गुर बाबा। धन गुरु नानक देव जी जगत जनम दिन उतारदे आ कली काल दे जीवां दा भला करदे आ धरती नूं पवित्रता बख्शदे आ नाम दा छट्टा मारदे आ आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया सड़दी बलदी सृष्टि नूं ठंडक पहुंचा रहे ने। और ईमनाबाद सच्चे पातशाह जी चले गए इत्थे बाबर दा हमला होया बहुत भारी कतलोगार्द होया। इस संबंध में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चार शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे उचारे ने। दो शब्दों की आपां विचार पिछे सुन चुके हैं और तीसरा शब्द जिहड़ा हुण विचारांगे यह भी शब्द गुरु नानक देव जी ने उस अस्थान ते ही उचारिया है। सो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बख्शां कीतियां हन। जिन सिर सूहन पट्टियां मांगी पाए सदूर से सरकाती मुनियन गल विच आवे धूड़। जो हालात उस समय ईमनाबाद दे विच होए एती मार पई करलाने तैं कि दर्द ना आया। धन गुरु नानक देव दा कोमल हिरदा जिहड़ा सी दुखी हो उठिया। और गुरु नानक देव जी ने उस समय के हालात जां जिक्र करदिआं दस्सिआ सी कि किवें कतलोगारत किया गया किवें आदमी मारे गए स्त्रियों नूं बन्न के लै गए और जिहड़े सी जीव रोंदे ने एक दूजे नूं अपणिआं नूं रिश्तेदारां नूं याद कर करके। जदों इह सारे हालात वरत गए हुण घर घर विच रोणे पै गए। घर घर विच रोंदे ने लोग जिन्हां दे संसार तों जीव चले गए। उस समें दा दृश्य गुरु नानक देव जी अज दे इस शब्द विच बख्शिश करनगे रसना करांगे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई त्याए, श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरओ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है, जिस डिठे शब्द फजाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नाओ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाए, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत धन धन, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ इनार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अमृत कीता, तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन आरिया नाल चरवाए, गुरुद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी सदक केसा सवासा संग निभाया, तिना समूह शहीदां की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे, चेतावन का सदका सर्ब सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नो सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकिया झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा, मत उची मत पद दे राखे आप, अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पास दे सदा सहाई दार जी, ओ श्री ननकाणा साहिब, समूह गुरुधामा दे खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान, प्यारे खालसा जी नू बख्शो, निमाणिया दे मान, नितानिया दे ताम, नियोटिया दी ओढ़ने, आसरिया दे आसरा, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी दे हजूर अरदास बेनती है, आप जी ने कृपा रहमत कीती, आप दी पावन हजूरी विच शाम दे सुंदर दीवान सजे हन, सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दी कथा विचार कीर्तन छे पौड़ी आनंद साहिब दा जाप होया है, कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदिया होया पुल चुग दी खिमा बख्शना, पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईयां संगतां दे हिरदे ते वसाउणा, सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां, तरों करो नाम दान, चढ़दी कला दी दात बख्शनी, परिवारां विच सुख शांति, कारोबारां विच वाधे करने, जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई, चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी अरदास बेनती है संगतां वल्लों, बीबी कुलविंदर कौर दी तंदरुस्ती वास्ते अरदास बेनती, कृपा करनी तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां, भाई तारा सिंह गिल उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते परिवार वल्लों अरदास बेनती, कृपा करनी तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां, सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां बख्शियां खजानियां विचों, कड़ा प्रसाद देव सज के हाजिर है, करे पाक साल सोज पवित्रा लाभ भोग हर राय, आप जी दा सीत प्रसाद ज्यो छके नाम, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, श्रीमुख बाग दी बख्श करे सही प्यारे मेल, जना मिलिया उनका नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, दोहरा आग्या भई अकाल की,
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

तोहे को सहस मूरत ननायक तोही सहस पद विमलन एक पद गंध बिन सहस तव गंधे उचरत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिसदे चानण सब मह चानण होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा तरा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे रहा साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हव मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुभै दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोप खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे।

विकार संसय में है तरेहो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए पिया वह एह रस अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सह।

गुरु गवाया चार नदियां अगन तन चारे त्रिशन जलत जले अहंकारे गोरा केवड़ भागी तारे जन नानक उर हर अमृत हारे बसंत महला तीजा हर सेवा ते सो हर का लोग साथ सहज कदे न होवे सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे भी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे सास संभाले सास समाहे राहो हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिन सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूके अवमान साची दरगाह पावे मान हर जीव वेखे सद हजूर गुर कै शब्द रहा भरपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद समाल दर साचे पातशों कर जाए नानक नाम वडियाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखे और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनू एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ये मन मौलिया गाए गुण गोबिंद रहो गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ हो दास तपाई तो जग जीवन वसे मन आए भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहा भरपूर इस भक्ति का कोई जाने पियो सब मेरा प्रभ आत्म देओ आपे सद गुर मेल मिलाए जग जीवन सिओ आप चित लाए मन तन हरिया सहज सपाए नानक नाम रते रहे लिव लाए बसंत महला तीजा भगत वछल हर वसै मन आए गुर कृपा ते सहज सपाए भगत करे विचो आप खोए तद ही सच मिलावा होए भगत सोए सदा हर प्रभ द्वार गुर कहे सच प्रेम प्यार हो भगत करे सो जन निर्मल होए गुर शब्दी विचो हों मैं खोए हर जीव आप वसै मन आए सदा शांत सुख से समाए साचर ते तिन सद वसंत मन तन हरिया रव गुण गोबिंद बिना वैसु का संसार अगन तृष्णा जले वारो वार सोई करे जिहर जीव पावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ से वैसे सुपाई नानक नाम वसे मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाई सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सह सुपाए सच फल लागे सतगुरु भाई रहाओ आपे नेड़ै आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर शावकनी फूली बन राए गुरमुख विग सह सह सुपाए आन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचों झूठ प्रांत पर पंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किश करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे ये को चेता फिर जो न आवे सफर जन्म ए जग में आया साच नाम सहज समाया गुरमुकार करो लेवलाए हर नाम सेवे विचो आप गवाए रहाओ ते जन की है साची बाणी गुर कै शब जग माए समाणी चौ जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट होए एक साचे शब्द रहे लिव लाए से जन साचे साचे पाए साच तिहाइन देख हजूर संत जना की पग पंकज तूर एको करता अवर न कोए गुर शब्दी मेला वा होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करे जन देख हजूर संत जना की पग पंकज तूर हर सेती सद रह लिव लाए पूरे सतगुर दिया बजाए दास आका दास विरला कोई होए उत्तम पद भी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ

दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै।

को प्रभ तेरो मान सगल कटांको देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटांके अंतर जामी अपने गत मित जानो आपे आपन संग आप राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सार्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी

सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। शलोक देन हार पर छोड़ के लागे अन सुहाए नानक कहू न सी जय बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस पस्तूले पाछे पावे एक वस्त कान विखोड़ गुआवे एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर सो नाए चारा ताको कीजे सत नमस्कारम।

जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा ना करे जगदीश। जियो पिंड सब तस्की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बंत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाए इसका बल नए साथ कर्ण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी वपरा जियो जो तिस भावे सोई पुन थियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद चंद व्यवहार कबू वकास प्यार कबू मिता ब्रह्म विचार।

कबू होए मैं मडराजा कबू भेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कावे ज्यों प्रभ राखे तिवी रहे गुरप्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे वख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधक मु ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनंग जोन परमे परमिया नाना रूप ज्यों स्वागत गावे ज्यों प्रभ पावे तिवे नचावे ज्योतिष पावे सोई होए नानंद जावर न कोई।

ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रगय सतगुरमान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया।

जोवन बंध सोवत विष्टा का जंत आपस को कर्म बंध का आवे जन्म मेरे भोजन परमावे धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तनवंता हुए कर करवावे तृण समान के संग

मछली त्रवराए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव की तन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआट तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सतमिथ्या कैत किरत निंद का तुरी पया नानक ज्यो तिस पावे सोए धिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजना आसा संत का दुखी उठ चले न आसा संत के दुख न दृष्टे कोए जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए साब कर तिसके वो करने हार सदसदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात जे त्या वो सास करा सब कुछ बरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना केले आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़पागी नान जन से श्लोक त्यान सुरजनो सिमरो हरा राय का सन्मरन रखो नानंद परम पो जाए अष्टपदि मानुखी टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रह अगाए बो न तिसना लागे आए मारे राखे को आप मान के किसनाई हाथ तिसका हुकमू सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोए उस तद मन में करनकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मन रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकर का रंग सार संग बिन से सब संग चरण चलो मर गोबिंद मिटे पाव जपिय हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दर गय नानक उजल मथा बड़बागी ते जन जगमाए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत कनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नान तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपना आप सुजे तिसकी जानो तिस नाम बुझे साध संग हर हर जिस कैत सर्व रोग ते अर्जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस में सोए निर्वाण एक उभर जिस जन की आसा तिस की कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेव को किसते डरे जैसा सत ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तब सब जय जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनक युक्त रस्ता पे थाप अवनासी नाय कुछ खंड धारण धार्यो ब्रह्मण्य लख भेव पुर प्रताप आव जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदय तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दूप सारण आपे में लय कृपाल जो गुर का शब्द भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे वट भागे नाम जपत पावे विश्राम नान तिन पुर को उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करने हर पछाने सोए प्रभ का किया जन्म ईठलगाना जैसा सात ऐसा दिष्टाना जिस दे उपजे तिस माए समाए सुख निधान उनु बने आए आप सुको आप दिनो मान नान प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार

ज्यों मंदर को थामे थमण त्यों गुर का शब्द मने इस थमण ज्यों पाखाण नाव चढ़ते रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विकास ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रटावे तिन संतन की बादशो तूर नानकी हर लुच्चा पूर मन मूर काय बिलाई है पूर्व लिखे का लिखया पाई है दुख सुख प्राप्त हार अव त्याग तुम तिजे चितार जोग करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जपिर दे माए नानु पसे ती कर जाए जिस वखर को लैन तुम आया राम नाम संतन कर पाया ता जब मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल

जनका सेवक सो भागी जन के संग एक लिव लागी गुरु गोविंद की तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है बे सच नानक होसी पै सच आष्टपदी चन सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शाब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत सब होए नान सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रव्याया तत् ज्ञान तिस मन प्रटाया भय ते निरपो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना मस्त माए लय बस्त कटाए ताको भिन्न कहना जाए बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेव सदा पुजारी ठाकर के सेवक के मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जे दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखे ताकि गत में कोई न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिश प्रटाया नीकी केरी में कल राखे भस्म करे लश्कर को लखे जिसका सास न काटते आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव मिर्थे जात मारे ना रखे अब न को सब जी आका राखा सोहे काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबल खुरानी बारम बार बार प्रभ जपी है पी अमृते मंत्र पी है

आस रखो मन माए सर्व रोग नान मिट जाए। जिस धन को चार कुंटुर धावे सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुखो नित बाछे मीर सो सुख साधु संग फरीर। जिस सोभा को करे भली करनी सा सोभा बजहर की सरनी।

असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार।

तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजात छंद नमस्तम काले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम रूपे नमस्तम भिखे नमस्तम लिखे नमस्तम काय नमस्तम जाय नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्म नमस्तम नाम नमस्तम धाम नमस्तम जीते नमस्तम पीते नमस्तम बाहे नमस्तम डाहे नमस्तम नीले नमस्तम नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त धारे नमस्त पारे नमस्त सुके नमस्त निक नमस्त भूते नमस्त जुपे नमस्त नमे नमस्त नरमे नमस्त नरदेसे नमस्त नरभेसे नमस्त नामे नमस्त नरकामे नमस्त नरधाते नमस्त नरगाते नमस्त नरधूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त नृतापे नमस्त थापे नमस्त त्रमाने नमस्त निधाने नमस्त गाहे नमस्त बाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त असर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त योगे नमस्त अरंगे नमस्त भंगे नमस्त गम्य नमस्त रम्य नमस्त जलाश्रय नमस्त नरश्रय नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त मजवे नमस्त अजवे देश देशे नमस्त पेशे नमस्त निर्धामे नमस्त निर्भामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सतदेवे नमस्त भेवे नमस्त जन्मे नमस्त सो बनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्तम वर्णे नमस्तम मरणे नमस्तम जरार नमस्तम कृतारम नमो सर तंदे नमो सतबंदे नमस्त साके नमस्त निर्वाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंत नमस्त महंते नमस्त सतरागे नमस्त सुहागे नमो सर सोख नमो सर पोख नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाची शंतो प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है पेख है नाम है काम है अदय है बह है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है गंज है बंज है जूझ है जंज है मीख है रफीक है तंद है बंद है निर्भूज सूज काल है जाल है लाह जाह नंत है मंत है लीक है नृसीक है निर्लंब है असंग है अनिर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गाह है मान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग भुजा छंद नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमो देव देवे भेखी भेवे नमो काल काले नमो सर्व बाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगे नाते नसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी नामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति विभूते।

नंदन। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चतर चक्र बासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाची छंद। ना सतरे ना मित्रे ना परम ना पितरे ना कर्म ना काये अजन्म जाए ना चित्रे ना मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधिसे अधिसे अकिरसे भक्ति छंद्वय प्रसाद के शजदे से त्वय प्रसाद कथते के शजदे से के बिज पेसे के अगंज कर्मे के पंज परमे के बिज लोके के अदित सोके के अवधूत बरने के विभूत करने के राजम प्रवाह है के तर्म तुजा है के अशोक बरने के सर्वाव परने के जगतं कीर्ति है के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनुपे के आद देव है के आप अपेव के चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रही में रहा के पाक भी है वह के गह बुल गह के अबुल गुना है के शान शाह के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज करही में के कर्म करी में के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र धानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दिन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मानने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कली में के परम पही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसन वजू है तमावल रजू है हमें सलसला में सली खदमदा में गनी मुल शिखिशते गरीब परस्ते बिलंद मकाने जमीन जमाने तमीजल तुमा में रसूल निदाने हरी फुल जी में जायक जकीने नेकल तरंग है भीर है भंग है अजीजल निवाज है गनी मुलखराज है नुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदेव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सलाम है सेवर काम है निराद स्वरूप है गाद है अनूप है ओ अंगाद रूपे नाद स्वरूपे नंगी नाम त्रिभंगी त्रिकाम है।

नी मुनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना देखे करुण ब्रह्म गंजे लेखे भुजंग प्रजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद शतरम प्रणासी क्रीम अलकुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वम सुवं सर्वदा सर्वयुक्ते दया दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते

मानवेंद्र गजेंद्र नरात जौंत लोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्मे सर्विशन सचिपते अंत बसे जम पास परेंगे।

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपाई।

दे मोहि बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेव सिख सबे करतारा मोर अशान कर दे करिये सब हरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा दुर्भन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेव सिख हमारे तारिये चुनचुन सदर हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे वरिये मन काल का त्रासन मरिये हूँ जो सदा हमारे पचास

नर के रहे हो जा की एक बार चौबीस गु के चौबीस सत्रह सहज पुण्य जय अर्ध सहज पुन तीन की जय भाद्रो सुधी अष्टमी रविवार तीर्थ द्रवगन।

हार जोत रखी तुद बेता तु जग में आया रापे माता आपे पिता जन जीव पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया त चलत होआ चलत नदरी आया कहे नान सिष्का मूर रचिया जोत राखी।

मंगल गाव श्री ग्रह मंदिर बनियार गाव मंगल ने सखिये सूदो सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनद बाणी गुर शब्द जानी अर नाम हरस भोगो कहे नानक प्रभ्या मिलिया करण कारण जोगो।

पौड़ी आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो ना हो दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुझ देव करे पसाओ तू जानो ही सब सह दे ले से दिल कवाओ कर आसन डिठो चाओ आसन डिठो चाओ।

0: ॾाढे जाने चुथो वॾी वॾी जाणे हलाओ वॾी वॾी बुझे सभु भाओ वॾी वॾी जा पुछना दाद वॾी वॾी जा पिया नानक कारण कथनी चाहे कीता करणा सरवर जाए महला दूजा
1: हे जग सच्चे की है कोठड़ी सच्ची का विश्वास एक नहा हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक नहा पाणे कढ ले।

0: करें जे अपनी तन तरी सतगुरु पाया एह जियो पोते जिन भ्रमिया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु सतगुरु जे उड़दा ता को नहीं सब सुनियो लोग सब आया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया
1: जिन सचो सच बुझाया।

0: पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंग है मोह त्वार जति सदावे जुक्त ना जान है छठ भय कर भाव
1: सबको पूरा पे होवे कठिन कोई आखे।

0: श्याम
1: कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब कुछ समावे कह रहे पर भूल राम नाम देवा में सू नायले प्रास नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर चले चंद्रावल कान कृष्ण जातुम पहाओ।

हे पातशाह मेहर कर साढ़े ते, तेरे दर ते ढह पए आ ढह, मेल लहो दयाल ढह पए द्वार, सचे पातशाह तेरे दर ते ढह पए, सानू अपने नाल मिला लै, साढ़े ते मेहर कर दे वाहिगुरु, साढ़े ते बख्शिश कर दे। दसवें पातशाह दे दरबार विच एक मुसलमान काजी आ गया। सतसंगियो सलार दीन दा जिक्र मिलदा, इन्हें मन दे शंका कीता बैठे बैठे ने कि संगत आउंदी है, लोग आउंदे ने, आ के मत्था टेकदे है, गुरु कोलों सुखना मंगदे ने, कोई दुध मंगदा, कोई पुत मंगदा, कोई सुख मंगदा। शंका मन च यह आया, उस काजी दे विद्वान सी, शंका दे मन च आ गया बैठे बैठे दे, जे गुरु जी इन्हां दीआं इच्छा पूरियां करदे ने, फिर अल्लाह ताला दे वाहिगुरु दे परमात्मा दे भाणे च फर्क पैंदा। परमात्मा किसी के कर्मां अनुसार उन्हूं दुख दे रहा, तो गुरु उन्हूं दुखां नूं सुखां च बदल देवे, ये रजा विच फर्क है। जे गुरु इन्हां दा स्वार दा कुछ नहीं, तो फिर गुरु जी दे कोल आउण दा की लाभ है। अंतरजामी गुरु कलगीधर जी ने जाण लिया, गुरु जी ने एक मोहर दित्ती काजी नूं, मोहर स्टैंप, कहिंदे काजी इहदे अखर पढ़, अखर पुठे होंदे, आपां नूं पता जिहड़ी मोहर दे अखर पुठे होंदे ने। कहिंदा मारे पढ़े नहीं जा रहे, क्यों? कहिंदा अखर पुठे दे। सच्चे पातशाह ने शाही लाई, कागज उत्ते लाती मोहर, कहिंदे हुण पढ़ पढ़ ली। कहिंदे कोई समझ लगी? कहिंदे नहीं। कहिंदे जदों कोई गुरु का प्यारा सिख सरदालू, कोई भी प्या प्रेमी आउंदा, शरदा की शाही ला के मत्थे ते शरदा दी, ते गुरु चरणा चा के मत्था टेकदा ना, शरदा नाल प्यार नाल थले धरती ते मत्था ला के, ते पुठे लेख सीधे हो जाते ने। प्यार ना बोलो सतनाम वाहिगुरु, दुख लिखिया करना सुख हो जाएगा। सतसंगियो दुध पुत मंगदा गुरु का सिख, दात मिलेगी। तो जे प्यारे मोहर आपां कागज उत्ते लाईए ना, वेख्या जो मोहर लाई दी, इहनूं नप के लाईदा, चंगी तरह नप के थले लग जाए, इदां जिहड़ा मत्था अपना धरती ते चंगी तरह ला के सच्चे पातशाह जी चरणां च संगतां दी धूड़ मत्थे ते लगे, ते भाग जाग पैंदे प्यारिओ, साध की धूड़ कट्टे अग कोट। गुरु जी कहिंदे आयो सरण दीन दुख भंजन, हे दुखां नूं भन्नण वाले वाहिगुरु, दीना नमाणिया दे उते तरस करन वाले वाहिगुरु, मैं तुहाडी सरण च आया हाँ। चितवो तुमरी ओर, हे वाहिगुरु मैं तुहाडे वल, तुमरी ओर दस तुहाडे वल, चितवो दा भाव चित वधा हाँ, तुहाडे वल वेखदा हाँ, तुहानूं याद करदा हाँ, मैं तुहाडी सच्चे पातशाह सरण आ गया। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, गुरु दे प्यार वाले गुरबाणी की संथ्या बच्चों नूं दिंदे ने। यह दमदमी टकसाल का प्रमुख मनोरथ है कि जिथे भी गुरु का सिंह, टकसाल का सिंह ग्रंथी की सेवा करता या कीर्तन की सेवा करता, तो नाल नाल बच्चों नूं शुद्ध बाणी पढ़ाउण दे वास्ते भी प्रेरदा। तो बेनती करते जिथे भी यह शब्द आ जाए ऐड़ा तो पब्बे दलावा, उत्थे पाठ करना अपै, अभे नहीं। अपै का अर्थ हुंदा जिहड़ा डर तो रहत, भै हुंदा अखर भय, तो अगेतर लग गया अपै, जिहड़ा डर तो रहत। जाप साहिब पढ़िया करो, जाप साहिब की बाणी बहुत आनंदमई, तो एक रस ते लय विच बाणी पढ़न वाली प्यारिओ। ये 1100 वार परमात्मा अगे नमस्कार की गई है। अपन गुरु चरणा चाह रहे हैं, एक बार मत्था टेकांगे, दो वार टेक लाँगे, चार वार टेक लाँगे, फिर सोची दा हुणे मैं आया सी, फिर उदा ही आप आए ने कई बार। तो जाप साहिब की बाणी पढ़ोंगे 1100 वार परमात्मा अगे नमस्कार है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। ते आपां इहदे च पढ़दे चाचरी छंद, अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, ये सारे वाहिगुरु के नाम ने। अरूप का अर्थ रूप तो रह, रूप हुंदा ते ऐड़ा गेतर लग गया आरूप, जिहदा रूप ही कोई नहीं, अरूप है, अनूप है, उपमा तो रहत है। इसलिए जिहड़ा पाठ है ऐड़ा, इहनूं थोड़ा जिहा वखरा करके पढ़ांगे। आ भै, अभय पाठ नहीं करना, अभय हैं, अभय हैं, हाँ किते किते आउंदा अबे तबे की चाकरी, उत्थे आउंदा ऐड़ा बब्बे लां, अबे उत्थे बब्बे लां है। जिथे भी पब्बे दलावां आ जाण, उस तों पहला ऐड़ा जे, वह पाठ अपै है। इसलिए
ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੋ। ਅਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਦਵੀ, ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਨਮ ਦੇ, ਮਰਨ ਦੇ, ਹੰਗਤਾ ਦੇ, ਮਮਤਾ ਦੇ, ਮੇਰ ਦੇ, ਤੇਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਰ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ 'ਤੇ ਮਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਛਬੀਲਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਓ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ।

फिर संकट जो न गर्भ न आयो सो कहो टल गुर सेविया अहमस सहज सुभाए दर्शन।

नमस्कार तेजी को हमारी सगल प्रजा जी ने आप सवारी से कुन को सवगुन सो दियो शतरन को फल मोहद कियो कट कट गए अंदर की जान भले बुरे की पीर पहचान चीटी ते कुन चरस थूला सब पर कृपा दिशा फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट गए पट पट की जाने जबत कर करा करता रा प्रजा तर तम दे अपारा जब कर कर तो कबू तुम मैं मिल दे तर सब हूं जेते बदन से सब तारे आपा अपनी बुझे चारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब

लाए चित सन मुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो सो कहो टल गुर सेवी है एहनस सहज सुपाए दर्शन परस्या गुरु कै

हर पाणा गुरपाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे।